मुकलिंगीत, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलीले जमनासाथ, प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।